अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा कर एमजी गाड़ी में रखी गई। और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका।

0: Roll camera and action!
1: आदि वो लोग को शूट कर रहे हैं।
2: हमारे बिना शूटिंग ऐसे कर रहे हैं।
3: ये तो अपना ना ना। या कम ऑन।
4: बाल की शूटिंग हमारे बगैर।
5: Fair enough.

जवानों में ताकत भी आई, जो ताकत भी आई तो जुरात भी आई, मोहम्मद जो आए तो रहमत भी आई, जो रहमत भी आई तो दौलत भी आई, जो दौलत भी आई तो बरकत भी आई, जो बरकत भी आई।

सरे अर्श शहनाइयां बज रही है, पए मुस्तफा महफिले सज रही है, मसरत के शह को पयाम आ रहे हैं, खुदा की तरफ से सलाम आ रहे हैं। सजा बाग जन्नत मोहम्मद की खातिर, जली शमे रहमत मोहम्मद की खातिर, हर एक हूर जन्नत की दुल्हन बनी है, सरे राह मशअल।

ने देखी एक झलक रुकी वो शैदा हो गया, एक नजर पड़ते ही हर बीमार अच्छा हो गया। कैसा ही तूफा हो लेकिन पार बेड़ा हो गया। या मोहम्मद उसका हर गम से कनारा हो गया कि जिसके सर पर आ

गुनाहगारों की बख्शिश की कोई सूरत न थी। करबला में लाज रख ली आपने ईमान की। बख्शिशे उम्मत पे जब शर्ते शहादत लग गई। मरहबा ए फातिमा के लाल हुसैन इब्ने अली, दे दिया सर।

अपना वाली है वही जो साहिबे मेराज है, जिसकी नालेनी मुबारक अर्श की सरताज है। गम के हाथों मेरे मौला जिंदगी का राज है, एक नजर की हस्ती इबरत फकत मोहताज है, कि तुमने जिस कतरे को भी

दिलों को साफ करो, काबे का तवाफ करो, चलो चलो हज का महीना आ गया, चलो चलो हज का महीना आ गया।

0: चुटकी कहेंगी, अपने आप को बहुत चालाक।
1: देखो रवि, बर्दाश्त की भी हद होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे चुटकी मत कहा करो, अब मैं चुटकी नहीं हूँ।
0: अरे मैं तो अब तक बेखबरी था। सच कहती हो पंजाब की रेशमा, अब तुम चुटकी नहीं रही,